0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Sun FM. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihan ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

0: 还有花就绿索路 FM 不凡
1: सोलु एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
2: संचय सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
3: इट्स 8 AM बिहार को 8 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका 5 सोलु कुंडू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सोनी एफएम स्टूडियो टाइम
2: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: एक्सएम बिहानको 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगरपालिका 5 सोलु खुम्बू

पहाड़ी गाँव घूमने जानू ना बाघ भालू गैंडा हाथी चितुआ पशे पछी धन जन को क्षति हुन्छ चुपचाप बसे।

0: Time check. Solu FM studio time.
1: It's 12 noon. Madhyanako 12 baje.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुन नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: सांचे सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: 3 PM दिवसको 3 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ड्रामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
3: Piping Solutions.

0: হচ্ছেন রুজুতর্ক রকম ভক্ত বাড়ির সাধনকুম নম্বর একিম গণেশ সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় সেবাগ্রাহী মহানুভাবহরু তপাইলে আফ্নো সওয়ারী সাধনকো বার্ষিক রূপমা বুঝাউনু পর্ने सवारी कर नवीकरण वस्तु लगायत अन्य कर सम्बन्धी वितरण हेर्नका लागि सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गएर कर प्रिन्ट माग्न बैंक भोचर गर्न अघि सवारी कर तथा दस्तुर एकिन गर्न तथा कर बुझाएपछि प्राप्त हुने बिमा आफूले बुझाएको करको रकम र आफ्नो सवारी नम्बर एकिन गर्न हुन यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ।
1: कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय विराट।

छोड़ी गाँव घूम जानू पाग भालू गैंडा हाथी चितुआ पसे पछी धन जन को छेती।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sanche Sony FM Studio Time
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका 5 सोलु कुंडू

0: 柴花之旅，索努 FM 出发。索努 FM 101.2MHz。उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सोनु एफएम स्टुडियो टाइम
2: 6 PM साँझको 6 बजे
0: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोनु दुकुन्दा नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।

0: रोगादे रंगसी दन्दे बर्खर ग्यान्स्युबन मोला मार्गदर्शन गेदाङ रोगादे चिनिला चु गेदाङ रंगनिदा खरङबा नम्जी तुदे चु गेदाङ ग्यान्छी रंगनिदा तिकै खुल्दुले ताबा मुसाम रंगनिला पत्रला नन्छी आसला सिसी बमुला रंगनिला सल्ला कुइखला कुइखास्युला विवाह रंगनिदा आनन जेन बमुला तुदे रंगनिला प्रार्थना लदोब विषय दुगो मुला विषम रंगनिसी कुइखास्युगु विवाह नन्ना जेन बमुला रंगनिदा नन्ना चु गेदाङला ठेगाना चुरंग बमुला
1: कार्यक्रम मार्गदर्शन जीपीओ नम्बर 8975 ईपीसी 2561 काठमाडौँ नेपाल इमेल आईडी twrnepal@yahoo.com एसएमएस लागिरे 98473 35679 98473 35679
0: लसो रोदुगु तिनी इचु गेदाङ यासेङनी फेसी निबन मला दोषी खाबा चुनुन दुईरी रंगनी लंगोनसांगले रूप तपरी खाला बिबा बाचो लबन नई चुग्याम फेसिनेला लसो फ्याफुल्ला

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sanche Surya Fan is studio time.
4: It's 7 p.m.
5: को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्डा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: साइन चेक सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 पीएम रात को 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुन नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: 삼으로 투하시도 로사이.
1: सूचना सूचना सूचना सुरुंग जुनगढ़ी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्य क्रम में माथिल्लो सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो खेरा साधन क्षेत्र में घाँसपात काट्न गाई वस्तु चढ़ाउन तथा आवत जावत गर्ने

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: सांचे सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: इस 9 PM रात को 9 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चोकमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
3: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरू कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनुका साथै सर्भिसिङ सेवा
3: एक्सचेन्ज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइनबाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरीको सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारी भन्जाङ ओखलढुंगा।
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888002 र 9842803000।